स्वर्ग बास रंग बर कर सगरी पूरी समेत चा पई जो है कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट न आवे विष्णु भगत के फल होई आद ब्याद छव सके न कोई संबंध सत्रह सहस पचावन हाड़ वधि प्रथम सुख दावन तो है प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लाहो लेहो सुधारा दोहरा।

भलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम रखो अपने भाला तुम निधान अटल सुनता जी जंत सब जाचे कहुनान कहम एह हवाला राख संतन कै पछे आनंद गुणी निधान तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुरपद रेल रवाल सब दर्द भाई दुख दाल हर हो नदर नेहार हर कगे हर आप सवारे ओ।

हुक्म अनुसार ये नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुरपग रेन रवाल सब दालद दुख सब दालद पंज दुख दाल हर हो हो हो नदर निहाल अस्थाई दे दुख है। मेरी बेनती है मेरा बेटा है जसप्रीत पाल सिंह पुरातन कीर्तन अनुसार गुणीन सज्जना तो मैं खिमा चाहता हाँ पखावज दे बोल इस तरह बजाए जाते सन। मैं एक मिनट आप जी का इसलिए लिया है कि दादरा कहरवा तो आप गुरु के कीर्तनियों नाल गाते हाँ पर अज जरा अस्थाई विच एक पंक्ति पड़ताल की भी कह के वेखिए आप आख सकते हाँ या नहीं। मेरे मन आखो जी मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुरपग रेन रवाल सब आखो जी नट नारायण

बहुत दूर तक बैठी है। असि ते तीन जने गा दो जने रहे हैं, पर नाल सिंह बैठे ने। ऐ साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है साडे कोल, पर आप जी की गिणती बहुत ज्यादा है। आप दे दस रहे ने अज की सेवा करके आप जी पासों खुशियां छुट्टियां लेके कल टोरंटो जाना है। दसरिया नूं भी याद रहे कि संतां ने पड़ताल नाल नाल गाई सी, बुलंद आवाजी नाल अखंड जी कोई।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: देखो कोई अरबां पती है कोई दिहाड़ी दार है कोई मांग के खांदा है करम ही आखो साता करम ही कोई लख यतन कर ले फिर मसा रोटी तक रहा कोई करोड़ा अरबां बती करमा करके कहे को 50 लाख दी गड्डी करमा करके मैनू दिल्ली वालिया ने दसिया जसवीर सिंह जी ने कहते दो दो ढाई ढाई करोड़ पांच पांच करोड़ दी भी गड्डी करमा करके किसी को 5 करोड़ दी किसी को 50 लाख दी किसी को 10 लाख दी है किसी को 2.5 लाख दी है किसी को स्कूटरी है किसी को साइकिल है किसी को लत्तां ही नहीं है भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर जी नूं कहिंदे महाराज करमा बारे चानना पाओ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਝੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਝੜਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਹਾਂ

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

नारागे नारंगे नारूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे पुजंग प्रयात शांदे नामस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे निरकामे विभूते समस्तल स्वरूपे।

कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ निधावै ताए, सब ताई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब ताई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत।

बलिदान भिंडा दली खाक दे मेला तमस्त कलाइए गुड़ा लाल छड़िए हो एक मना लगती आइए फालते वे हो पाइए देवे ही कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया ता तूट दिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए।

सदैव सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुर

गरीब नवाज पातशाह जी आप जी दी छत्र छाया हेठ अमृत वेद सुंदर दीवान सजे सजे हुए दीवाना अंदारा नित नेम पंजा बाणिया दे पाठ आसा दीवार दे भोग जी की अरदास आनंद साहब से पौड़िया जी की अरदास होइया भुला चुका दी माफी बख्शो सतगुरु जी आप जी दे दर कर दे प्रीतवान गुरजीत सिंह गुरिया दे जन्मदिन की खुशी अंदर अरदास बेनती करवा रहे हैं सतगुरु जी महान कृपा करनी अपने दरों घरों सिखी सदक भरोसा नाम दान बख्शना सरबत संगत दे कारज रास करने

से अमृत शतर गुर राम दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैना मूरत पंच परमान पुरख गौर अर्जन पिखो नैन नानक नाम नरंजन जान्यों

तन शब्द सुरत की नींव रखाई, गौर अमरदास की अकथ कथा है। एक जी ही कछ कही न जाई,

परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है। हर जीवन नो तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा, चाहे वो मनुखां दा जीवन है। क्योंकि इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख जीवन दी शिखर है, जिंदगी दी बुलंदी है। इसनों धरती दा सरदार आखे है गुरु नानक देव जी महाराज ने, अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इसनों अशरफुल मखलूकात आखे है। अगर जीवन नू नापांगे तो फिर इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख तो सब कुछ थल्ले ही है, पिछे ही है। पिछे लई शब्द है संस्कृत देच पाश, जो पिछे रह गए, पाश देच रह गए पशु। कौन पशु? जो पाश देच रह गए, पिछे रह गए। तो मनुख तो पिछे है सारा पशु जगत, और इस पाश जगत देच, इस पशु जगत देच चौपाए जानवर आ जांदे ने, पंछी आ जांदे ने, वनस्पति आ जांदी है, हथा कि कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जांदे ने। क्योंकि गुरबाणी ने इन्हां नूं वी यौन मनिया है। कई जन्म सैल

0: फिर करया कई जन्म गर्भ में खरया। अनंत जन्मा तक अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे, तू पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है। अचेत सुन, तू जितना इस पृथ्वी दे जीवन है मनुख तो पिछांदा या मनुख। ये तीन तरह दे पड़ाव तो लंघदा है और इन्हां तीन पड़ावां नूं नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे वनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां ते झात मारांगे दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने, तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने, जवान ने, आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है, बालक है। ते बचपना जवानी बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी ही तलते ही नहीं, पंछियां दे छवी ने, पशुआं दे छवी ने, पक्षियां दे छवी ने और पत्थरां दे छवी ने। ऐसे पहाड़ ने बुढ़े हो गए, जैसे सतपुड़े नु कहंदे ने बिरध हो गया, ऐसे भी पहाड़ ने जो जवान ने जैसे कि हिमालय, पर ऐसे भी टीले अजे खड़े ने, उसर रहे ने, उच्चे हो रहे ने, जिन्हां नु कह के देख के ये आखना पैंदा है इते बच्चे ने। कुछ अजे प्रकृति दे गर्भ दे भी ने, उभरणगे समा लगेगा। लेकिन गल ते अशरफुल मखलूकात मनुख दी है, जो धरती दा सरदार है गल ते इस दी करनी है। यही एक जीव है जो एक तरह दी जिंदगी नहीं जीवंदा, कई तरह दा जीवन जीवंदा है। इसका सामाजिक जीवन है, इसका कुछ राजनैतिक जीवन है, इसका कुछ अध्यात्मिक जीवन है। पूर्ण पुरुख उसनो कहंदे ने जो सामाजिक तल ते पूरा है, राजनैतिक तल ते पूरा है, धार्मिक तल ते पूरा है। बड़ा सोहना शब्द है गुरबाणी दा, पूर्ण पुरुख, मुकम्मल इंसान, पूर्ण पुरुख। वो पूरा है जिसका सामाजिक जीवन पूरा है, वो पूरा है जिसकी राजनीतिक सोचनी पूरी है, वो पूरन है जो धार्मिक तल ते पूरा है। ये असी किस तरह नापांगे कि इना जिंदगी दे भी, इस तरह की जिंदगी दे भी समाज, राजनीति, धर्म देच भी बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, बुजुर्गी है। शरीरक बचपना अखा नाल देखा जाता है, सामाजिक बचपना देखना है तो दिमाग नाल देखना पड़ेगा, अंदर दी अख नाल देखना पड़ेगा। शरीरक जवानी देखनी है अखा नाल दिखाई दे जाती है, जवान है। पर किसी का राजनैतिक तल ते बालग होना देखना है तो फिर अंदर दी अख चाहिए, अंदर दी सोच चाहिए। कोई धार्मिक तल ते पूरा है इते वेखण वास्ते पूरी अख चाहिए अंदर दी, पर कोई शरीरक तल ते बुजुर्ग है, पूरा है, बुढ़ा हो गया इते अखां दा विषय है, अखां ही दस देंदियां ने ये बुढ़ा है। लेकिन अख ए नहीं दस सकती कि धार्मिक तल ते किथे खड़ा है, अख ए भी नहीं दस सकती कि समाजिक तल ते किथे खड़ा है। अखां ए भी दसण दे असमर्थ ने कि ए राजनैतिक तल ते किथे खड़ा है, किथे अंदर दी अग खोलनी पेगी। पर अक्सर एक बदकिस्मती रहिंदी है, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਵੇਰੀ ਮਲਕ ਬਹਿਠਾ ਆਏ, ਗੜ ਲੀਤਾ ਗੱਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਮਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਵੱਟ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਬੁਝ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਮਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨੂਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਜਦ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰੈਨੈਨ, ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ। ਲੋਚਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਇਲੋਚਨ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈਨੈਨ, ਬਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕਾ ਤਾਹੇ ਕੋ ਪਿਓ ਤ੍ਰੈਨੈਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ। ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਟੰਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਰਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੈਰ, ਜੈਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਣਾਉਣਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਠੇਠ। ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਚਪਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਚਪਨਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੀ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਤੇ। ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਜੋੜਿਆ, ਇਸ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਚਪਨਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬਚਪਨਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਅਰਥ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਖੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਚਪਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਥੇ ਤੇ ਲੱਖ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਲੌਣਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ। ਜੈਸੇ ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਮੂਲੀ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਵਾਸਨਾ ਬੜੀ ਅਪਾਰ। ਤਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ, ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਛਾਣਾ ਰੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਨਜਾਣ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਸਫਾ ਗੋਟਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸਤਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਅਨਜਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਨਜਾਨਪਣੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਮਹਾਨ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਥਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਸੁਕਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। पर सुकरात कहने ने जब मैं जवान हो गया तो छोटे होंदे आ बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी ओ बोल जद मेरे सामने आंदे सन तो शर्म नाल अखां झुक जांदियां सन। मैनू जवाना दी महफिल विच बैठ के कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता। और यही महापुरुष कहिंदा अज मैं बुढ़ा हो गया। एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची मैं कुछ भी नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। जिस जिस नूं भी मैं ज्ञान आखिया उते अज्ञान साबित होया। धर्म नूं जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया, प्रभु नूं जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जांदी है अगर परमात्मा नूं नहीं जानिया, ईश्वर नूं नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दियां इस अवस्थावां नूं जिस ढंग नाल खोलिया है ओ मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नूं पेश कर रहा। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर परत गह ले हो अंगुरिया सर्वन न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने हे प्रभु है ते सही मेरे कोल धार्मिक जीवन पर ए जीवन ऐसा है जैसे किसी मां दी गोद दे चुसदा बच्चा, एक मासूम बच्चा। और उस बच्चे नो ए भी नहीं पता है मेरी मां है जिसने मेनू गोद च लिया है। अज जमे है, एक दिन दा है, दस दिन दा है, पंद्रह दिन दा है, बैठा ते मां दी गोद च है, सो रहा है मां दी गोद च, लेकिन गोदी दा कोई ज्ञान नहीं, कुख दा कोई ज्ञान नहीं। पिला रही है, रिजक दे रही है दुध मां, पर रोजी देहिंद दा इसनु कोई बोध नहीं है। परचा रही है, खिड़ा रही है अपने हथा नाल, पर ए हथ की ने कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी बोध नहीं। अगर इस हिसाब नाल देखिए बहुत सारिया नूं कोई बोध नहीं, असी कित्थे आ, किस दे हत्थां दे चा, किस दी गोद दे चा, इतना भी बोध नहीं है। बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल बचपना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने हे प्रभु धर्म दी दुनिया च मेरा जन्म ते हो गया पर जन्म ऐसा जैसे बच्चा मां दी गोद च है, कुछ भी बोध नहीं। मुंह दे जबान है, बोल नहीं सकता। हाथ हैगे ने कुछ भी नहीं कर सकता। पैर हैगे ने चल नहीं सकता। दिमाग है, सोच नहीं सकता। कान हैगे ने नहीं सुन सकता। इस बच्चे नु कुछ भी नहीं पता सामने जो गुफ्तगू हो रही है की है, दो बंदे जो कुछ बोल रहे ने की है, माता पिता जो कुछ बोल रहे ने की है, इन्हू कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, इन्हू कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जन्म होया तो बहुत सारिया का धार्मिक दुनिया के जन्म ते हो जाता है, जन्म हो गया है। ये असि किस तरह वेखांगे, मंदिर जान लग पे है, गुरुद्वारे जान लग पे है, पूजा पाठ करन लग पे है, बाणी पढ़न लग पे है, कथा कीर्तन सुनन लग पे है, अमृत वेले उठन लग पे है, कर्म कांड विच प्रवृत्त हो गया। लेकिन ये सब कुछ की है, कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी पता नहीं। इस तरह हो रहा है जैसे गोद विच बच्चा है, दूध पी रहा है, खिड़ाया जा रहा है हत्थां विच, सुलाया जा रहा है गोद विच, पर उसकी अवस्था च सब कुछ अचेतमई चल रहा है। दूध पीना भी अचेतमई चल रहा है, हत्थां विच खेड़ना भी अचेतमई चल रहा है। धार्मिक कर्म सारे दे सारे अचेत खड़े ने, सचेत नहीं है, सावधान नहीं है। तो धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु जन्म हो जाना ही काफी नहीं, जीवन भी तो मिलना चाहिए। बच्चे का जन्म हो गया है, इस कोई सामाजिक जीवन नहीं। बच्चे का जन्म हो गया है, एदे कोई राजनीतिक जीवन नहीं। बच्चे का जन्म हो गया है, एदे कोई धार्मिक जीवन नहीं, कुछ भी नहीं है। जन्म होया है, लेकिन जिसनू कहने ने जिंदगी ये नहीं है, जिसनू कहने ने जीवन ये नहीं है, ये तो विकसित हो गया। फिर अज समा हो लगेगा, लेकिन ऐसा देखने दे चाया है, विकास हो जाता है समाजिक जीवन का, रिश्तियां की समझ आ जाती है। ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भरा है। अखां खुलदियां जा रही ने, समाजिक तल ते प्रौढ़ होंदा जा रहा है, जवान होंदा जा रहा है, रिश्तियां की सोच समझ वधदी जा रही है। ये मेरा मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पड़ोसी है, लेकिन ये मेरा परमात्मा है। धार्मिक तौर पे ते अजे भी अनजान रह जाता है, अजे भी मासूम रह जाता है, अजे भी जो है बच्चा रह जाता है। एक दिन राजनीतिक तल ते भी प्रौढ़ हो जाता है, सियाणा हो जाता है, और राजनीतिक लोगों दीयां गल्लां दे उत्ते उसका विश्वास नहीं बनता। अज तो 2500 साल पहले एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात ने कहा सी, और बड़े कीमती उसके पोल ने, अज ते सारी दुनिया पढ़ रही है, राजनैतिक ते अपराधी इक्को ही जहनीयत दे मालिक होंदे ने, इक्को ही मनोविरति दे मालिक होंदे ने। फर्क सिर्फ इतना है कि जिथे छोटा अपराध है अपराधी है, जिथे वड्डा अपराध है राजनैतिक है। सुकरात दे ए बोल कहना पेगा अमर बोल ने, और इस तरह दे पुरुष वक्ती बोल बोलते भी नहीं, अमर बोल बोलते ने। उन्हां दा संदेश वक्ती संदेश नहीं आउंदा, अमर संदेश आउंदा, और उन्हां दे संदेश विच कदी मुरदमे नहीं आउंदी, क्योंकि अमर बोल होंदे ने, सदीवी बोल होंदे ने, और बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। जद भी कोई राजनीति नूं समझण वाला हो जांदा है, राजनीतिक लोगों के बोल हवा दे गुबारे दिखाई देंदे ने, और कुछ भी नहीं। तो एक दिन सियाणा हो जाता है राजनीतिक तल ते, एक दिन इसनू बोध हासिल हो जाता है समाजिक तल ते, और इसे ही बोध देच जीवदियां जीवदियां अपनी जिंदगी दा अंत कर बैठदा। एक दिन धार्मिक जीवन अपनी शिखर नू छूंदा ही नहीं, कईयां दे अंदर ते यह जीवन पैदा ही नहीं आउंदा। कदी मंदिर गए ही नहीं, कदी मस्जिद देच नमाज पढ़ी नहीं, कदी गुरु द्वारे दे गुरु की झलक वेखी ही नहीं, कदी कीर्तन सुनिया ही नहीं, कदी कथा की तरफ कन ही नहीं कीते। ए उसका कदी शौक ही नहीं बनया, जन्म ही नहीं होया। होया जन्म शरीरक, होया जन्म समाजक, होया जन्म राजनैतिक, धर्म का ते अजे कईयां दे शरीर दे जन्म ही नहीं होया उन्दा। पर जे हो भी गया जन्म तो जीवन नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हो गया जन्म, लेकिन हे प्रभु अजे मैनू चलना ते आया ही नहीं, तेरा दामन पकड़ना ते आया ही नहीं, तैनू वेखना ते आया ही नहीं। अगर एक बच्चे नू मां मां नहीं दिखाई देंदी, प्यो पिता दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, अचे अजे नवजायद है, अजे इसनू कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी समझ नहीं, गुरु गुरु दे रूप विच नहीं दिखाई देंदा, प्रभु प्रभु दे रूप विच नहीं दिखाई देंदा। इसनू कहना पेगा धार्मिक तल ते अंदा है, कोई राजनीतिक तल ते भी अंदा हो सकता है, कोई समाजिक तल ते भी अंदा हो सकता है। भैन भैन नहीं दिखाई देंदी, भैन नाल भी गलत व्यवहार करता है, मां नाल भी रिश्ता इसका ठीक नहीं, पिता पिता नहीं दिखाई देंदा, इस नाल भी संबंध गलत ने, पत्नी पत्नी नहीं दिखाई देंदी, पति पति नहीं दिखाई देंदा, कई समाजिक तल ते भी अंधे होंदे ने, बिरहा बिरहा नहीं दिखाई देंदा। मित्र मित्र नहीं दिखाई देंदा, पुत्र पुत्र नहीं दिखाई देंदा, और इना नाल ऐसा अनाचार ओ कर बैठ देने तरह तरह नाल नहीं कर सकता। एक प्यो पुत्र दे नाल नहीं कर सकता, एक पति पत्नी नाल ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, पर एक पत्नी इस ढंग नाल पेश नहीं आ सकती। तो कई ते समाजिक तल ते भी अंधे होंदे ने, समाज दे रिश्ते भी नहीं दिखाई देंदे। कई राजनीतिक तल ते अंधे होंदे ने, लेकिन बहुते अंधे धार्मिक जगत दे च मिलणगे। इस वास्ते गुरु नानक ने ते ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण नाए, अंधे से ही नानका जो खसमो को थे जाए। धार्मिक दुनिया दे इत्ते सारे ही सूरदास बने हुए ने, अखां बंद खुलिया ही नहीं, ना प्रभु दी झलक ना गुरु दी झलक, अजे धार्मिक तल दा जीवन प्रगट ही नहीं होया।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ?
3: ਹਾਂਜੀ,
2: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ?
3: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟੀ ਕੇ ਨਾ

0: तेजी सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचदे करने ने, जे रुपये बाफर हो गए तां डॉलर इत्थे पहुंचने करने ने, तां गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे लै लियो। 604-349-1313 यूनिट 103-8140-120 स्ट्रीट सरी। 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स, दावा ते वादा पक्का।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममंशीलं सर्व पावने मम पावनं सर्व कर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप नालिपियते। सन्माननीय गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार आरंभ करा पेशकर सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस वक्त जो सतगुरु ने ख्याल बख्शे ने थोड़े जिया समय च, वो मैं थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। दो पंक्तियां नूं आधार बना के है हजूर कत दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो।

कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौनिध पाई। जन्म तो ही मनुख खोजी बिरतियां लेके आया है, खोज रहे है जन्म दर जन्म, एक खोज रहे है लभ रहे है तलाश कर रहे है। खोज खोज के जो मिले है उस तो तृप्ति नहीं, तृप्ति किवें होनी है इसका कोई पता भी नहीं। धार्मिक चिंतक ते ऐसा कहिंदे ने कि मनुख तृप्ति दी ही तलाश दे चे, और तृप्ति तो बिना इसनु होर कुछ भी नहीं चाहिदा। रजेवा चाहिदा है, तृप्ति चाहिदी है, और रजे होए नु ही राजा कहिंदे ने। ये राजा होना चाहिदा है, ये राजा बनना चाहिदा है, ये महाराजा बनना चाहिदा है। खोज है, तलाश है महाराजा होण दी, राजा होण दी। खोज दे अज तक जो मनुख ने आधार बनाए ने वो है जमीन, पहाड़, सागर ते आसमान। अनंत काल तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म मनुख धरती दी गोद विचों अन्न कढ रहे है, धन कढ रहे है, और लंबे समय तो इस दी कोख विचों बहुत कुछ मनुख प्राप्त कर रहे है, प्राप्त करदा आया है। पर जमीन इसनु राजा नहीं बना सकी, महाराजा नहीं बना सकी। भावे जमीन देते रहन वाले जमीन मल के राजा होण दा दावा कर दे रहे, महाराजा होण दा ढंडोरा पिट दे रहे, पर किथे ओ राजे सन। कहिंदे ने सिकंदर ने अंतिम समय अपने साथियां नु कहा सी, कफन चो मेरे हथ बार ही कढ़ने, ताकि जगत नु पता चले थोड़े हथ ही खाली नहीं, मेरे हथ भी खाली ने। तुसी ही सिर्फ खाली नहीं लौट दे ते खाली रहंदे, मैं भी खाली रहा और खाली वापस हो रहा। नहीं भर सकया, नहीं त्रिपत हो सकया, नहीं राजा बन सकया, नहीं महाराजा बन सकया। एक गल वखरी है कि सदियां तो मनुख राजा महाराजा दा लेबल अपने उपर लांदे रहने, ए राजा है, ए महाराजा है, ए बादशाह है, पर सीने चीर के देखिए सिवाय कंगालता तो होर कुछ नहीं, सिवाय भुखमरी तो होर कुछ भी नहीं। तो जमीन मनुख दी झोली नहीं भर सकी, राजा नहीं बना सकी। भावे जमीना ते रहन वाले, धरती ते रहन वाले राजा महाराजा होण दा दावा करदे रहे। फिर मनुख दियां निगाहां पहाड़ां ते चलियां गईयां। इसने पहाड़ां दे सीने चीरे बहुत कुछ लभे है।

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उगर सैन खोराज अभय भगतें जन दियो।

0: सी भले खाना है,
1: फ्रूटी क्या नहीं जाना है,
0: फ्रूटी क्या नहीं जाना है,
2: फ्रूटी क्या नहीं जाना।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
3: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
6: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचदे करने ने, जे रुपये बाफर हो गए तां डॉलर इत्थे पहुंचने करने ने, तां गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे लै लियो। 604-349-1313 यूनिट 103 8840-120 स्ट्रीट सरी। 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स, दावा ते वादा पक्का।
7: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.